0: समयको ख्याल राखौं। 6 बज्यो।
1: खरो विषयमा दरो बहस, नेपाली बहस।
2: यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चौचौ।
3: ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक।
4: डिसोम फाइबर नेट।

सी ए आई टीवी मा हेर्नुस फुटबल को हर एक एक्साइटिंग मोमेंट ए आई पिक्चर एंड साउंड संग अप टू 30% कैश बैक र 0% ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ बेस्ट एक्सचेंज वैल्यू प्लस 4 इयर्स फुल वारंटी अब घरमै स्टेडियम एक्सपीरियंस एलसी लाइफ्स गुड।

0: नहर।
1: World Inco Festivity Offer अब पाउंड होस एक वर्ष को 200 Mbps इंटरनेट और नेट टीवी साथ में डुअल बैंड राउटर नोकिया बीकन 1.1 मेश राउटर और नेट टीवी सेट अप बॉक्स मात्र रूप 1200 प्रति महीना में सर्थहरू लागू होने छिटो बने गई World Inco।

0: दमौली एफएम 94.2 मेगाहर्ट्ज सामुदायिक आवाज।
1: दमौली एफएम 94.2 समुदाय को आवाज।

0: आरबीटी 6054 1134
1: अरेंजर यमन खनाल
0: उत्पादक तथा वितरक सुपा देउराली म्यूजिक प्राली काठमांडू प्रबंधक यमन खनाल 9849404000